1947 तक काबज रहे। लार्ड माउंटबैटन ने पुराना पंजाब पाड़ के दो टोटियां दे विच वंड दिता। यही इस किताब की केंद्रीय सुर भी है। औरंगजेब तो माउंटबैटन तक की पंजाबी कहानी सुनाउण तो पहला पंजाब का प्राचीन पिछोकड़ देना बनता ही सी। पंजाब वंड दे लई जिम्मेवार गैर पंजाबी नावां नूं पढ़ के लगेगा कि यह पंजाब उपर कोई व्यंग है। इहो ही व्यंग तां पंजाब दी शख्सियत जानन वास्ते सहाई होएगा। पंजाब दा समाज अर्थचारा इस अध्ययन दे विच शामिल है, पर मुसलमान सिख हिंदू ते अंग्रेज दिलचस्प पात्रां दा सियासी इतिहास सिलसिलेवार बयान करांगे। गुरुआं, सूफियां, बदलाखोरां, शांति दूतां, जिला अफसरां, सियासी लीडरां, पत्रकारां आदि नूं भी देखांगे। इस प्रसंग दे विच कुछ सियासी सवालां दे हल लब्भांगे कि 1760 तों लैके 1849 तक सिखां दी चढ़त दा राज की सी। जदों सिख मराठे अफगान पंजाब उपर काबज होण दे लई संघर्ष कर रहे सन, पंजाबी मुसलमान बहुगिणती होण दे बावजूद खामोश दर्शक क्यों रहा? अंग्रेज राज दे नफे नुकसान देखांगे। पंजाब उपर जातियां ते जाततियां दा जड़ा बदला लैण दे बिरतांत देखांगे। पंजाबियां दी आपस दे विच कोई भाईचारक सांझ सी, मेल मिलाप प्यार सी, इस पासे घट नजर मारी गई है, इस वल झात मारांगे। इस अध्ययन दे विच पंजाबी औरत दी दशा देखांगे, हिंदू सिखां दी सियासत देखांगे, पंजाबी मुसलमानां दा अंग्रेजां दे नाल संबंध देखांगे, दूर दुराडे वसे नजर अंदाज पखतूना दे वल इक झात मारांगे। महात्मा गांधी दी कौमी कांग्रेस ने जदों 1999 तों 1947 तक भारत दे विच हनेरी झुला दित्ती सी, पंजाब उपर उसका कोई असर क्यों ना होया? हालांकि 1919 दे विच जलियांवाले बाग की घटना घट चुकी सी। इस सवाल का जवाब लब्भांगे। 1920 तों लैके पंजाब दी यूनियनिस्ट पार्टी ने खामोशी धारी रखी, फिर मुसलमाना ने पाकिस्तान की मंग क्यों कर दिती देखांगे। अखीर दे विच उस सवाल का उत्तर लब्भांगे जिहड़ा पंजाबी ते गैर पंजाबी सारे करदे ने, पंजाब दी वंड क्यों हुई? वंड हो गई सो हो गई, हिंसा क्यों हुई? 1947 दे पागल दौर दे विच इंसानियत किधरे किधरे रही वी रही, उस बारे जाणांगे। वंडे पंजाब दे नाल 1947 तों बाद की वापरिया, भविख दे विच की संभावनावां ने, यह अखीरले अध्याय दे विच लिखांगे। लो जी, हुण शुरू करांगे आपां, करदे आं पंजाब दी असल साखी। ते लो दोस्तो, आउण वाले फ्राइडे वाले दिन नूं फिर आपां इत्थों ही शुरू करांगे। अध्याय पहला, औरंगजेब दी मौत तों पहलां दा पंजाब, ते जाणांगे इस दे बारे। ते अज दा चैप्टर इत्थे आपां समाप्त करदे आं। ते लाइना तुहाडे लई खुल्लियां ने, गलबात करनी चाहुंदे हो तां निघा स्वागत है। +358 44 976 19 स्टूडियो दा नंबर है। ते इह सी दोस्तो किताब पंजाब औरंगजेब तों माउंटबैटन तक दा इतिहास, जिसनूं राजमोहन गांधी जी दी कलम है, लिखिया है, कलमबंद कीता है, ते प्रोफैसर हरपाल सिंह पन्नू जी ने पंजाबी जी विच इसदा अनुवाद कीता है। ते मैं तुहाडा दोस्त भुपिंदर भारज दुआबा रेडियो दा मंच फिल्म स्टूडियो तो तुहाडे नाल इस दी सांझ पा रहे हैं लगातारता दे विच। ते उम्मीद करदे हां इह किताब बड़ी इंटरस्टिंग होवेगी तुहाडे लई मेरे लई। ते जाणांगे औरंगजेब दी मौत तों पहला दा पंजाब किहो जिहा सी, ते पंजाब औरंगजेब तों माउंटबैटन तक दा इतिहास किहो जिहा सी। ते लो दोस्तो, अज इत्थे ही इस दी समाप्ति करदे हां, ते आउण वाले फ्राइडे वाले दिन नूं फिर तों इत्थों ही आपां अगे शुरुआत करांगे अगले चैप्टर दी। इह सी जी पंजाब औरंगजेब तों माउंटबैटन तक दा इतिहास, दूसरा लड़ीवार भाग। ते लो दोस्तो, जांदे जांदे तुहाडे सुनेहां वल नूं वधदे आं। जेकर तुसीं गलबात करनी चाहुंदे हो तां निघा स्वागत है। कॉल लाइनां तुहाडे लई खुल्लियां ने, +358 44 976 19 स्टूडियो दा नंबर है। ते तुहाडे सुनेहां दी सांझ पा के फिर मैं आ गया लैणा, जिन्ने क मैनूं सामणे दिखणगे ते उन्हां दी सांझ पावांगे। जे किसे दोस्त दा रह जाएगा तां मां माफी भी चाहांगा। ते जांदे जांदे तुहाडे सुनेहां वल नूं चलदे आं, की कहिंदे ने तुहाडे सुनेहे, ते उस तों बाद फिर आपां आ गया लैणे आं, ते इक जांदे जांदे गीत भी छड्ड के जावांगा।

0: चली गई।
1: बाजी
0: रो गया वल्ले दिल मेरे नू लाके चली गई। पुल दी नहीं पुल जानी दिलों पुला के चली गई।

0: हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार लैके मैं समरजीत सिंह शमी तुहाडी सेवा च हाजिर हाँ। तुसी सुन रहे हो दुआबा रेडियो, तुहाडी अपनी आवाज़। दोस्तों, सिक्ख्या ते रुजगार दे विच तुहानूं पता है कि असी वख वख जो मुद्दे ने जुड़े हुए विषय दे नाल, चाहे वह काउंसलिंग होए, चाहे वह रुजगार नाल जुड़ी हुई कोई गल होवे, उहदे उत्ते आपां चर्चा करते हैं, सिक्ख्या नाल जुड़ियां गल्लां करते हैं, एजुकेशन दे उत्ते गल करते हैं। तो इस सारे प्रक्रिया दे विच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिहड़ा विषय है वह आता है पेरेंटिंग, जानी कि बच्चे का पालन पोषण। सो अज इस महत्वपूर्ण विषय के उत्ते गलबात करने लई साडे नाल जुड़े ने पैनलिस्ट डॉक्टर भावना गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब तुहाडा।
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, डॉक्टर भावना गुप्ता जी को चेयरपर्सन हैं टर्न अराउंड एजुकेशनल एंड कंसल्टेंसी सर्विसिज जलंधर। तो इस तो इलावा वो बतौर डॉक्टर भी प्रैक्टिस करते हैं, तो काउंसलिंग दे विच बहुत सरगर्म ने, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वो दे रहे ने, तो स्टूडेंट्स नू करियर गाइडेंस दे विच उन्हां दा बहुत वड्डा जिहड़ा समां जिहड़ा लगता है, बहुत योगदान है उन्हां दा। तो विशेष तौर पर पेरेंटिंग वर्कशॉप्स वो ऑर्गनाइज करते हैं, तो उहदे विच मापिआं नू किवें जिहड़ा गाइड करते हैं अज आपां जाणांगे उन्हां कोलों। तो डॉक्टर साहब, सब तो पहला तो जो सवाल ये आता है मन दे विच कि पेरेंटिंग की है, पालन पोषण की है, इनू आप कैसे डिफाइन करते हैं?
1: जी, पेरेंटिंग सब तो पहला सानू ये समझना चाहिए कि सब तो कॉम्प्लीकेटेड जॉब और फुल टाइम जॉब है पेरेंटिंग।
0: जी जी,
1: इहदा कोई निर्धारित समा नहीं है। जब तक तुसी पेरेंट्स हो, पेरेंटिंग चलती रहती है।
0: जी जी,
1: एक बच्चे नू पैदा करना, उस दियां जरूरतां पूरियां करना, और जिस तरह आपां कहने कि सारे इदां ही पलदे है,
0: जी जी,
1: ये पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग इस तो वध के है कुछ।
0: जी,
1: तुसी एक बच्चे नू ओ बनाना जो तुसी बनाना चाहते हो, उसनू टाइम देना पैंदा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी,
1: उहदे लई जो एफर्ट्स लगदियां है वह सब इस पेरेंटिंग दे विच आ जांदा है।
0: जी जी जी जी, तो ये अपने आप दे विच ही उम्र भर चलन वाला
1: मापिआं
0: लई जिहड़ा काम
1: है, बिल्कुल
0: ते एक दिन वाला काम नहीं हैगा।
1: हां जी,
0: इहदे उत्ते गल हो गई ते खत्म हो गई।
1: हां जी,
0: इहदे जी, पर इहदा मतलब कि इहदे लई ते

चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, शरणजीत प्रेम हुण विकदा ए, शरणजीत हुण प्रेम विकदा ए, नैणे हंजू सच लिखदा ए, तुरी दरगाहे लेखा देना तख्त हिजरे दा हलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए।

तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा, तेरे रोने च रोआ।

मैं किन्ना तेनू चाया, तेरे विचों रब पाया, कासे जोगा नहीं ए रहा, मैं बड़ा मन समझाया, मंजिल सारे कर लेनी एक दिन आपां दोवां, मैं तेरे हासिया च हसां, तेरे रोने च रोवां।

कोयल दी कुकर ने मंजे ते पा दिता ते कूक छुड़ा दिता तक सुत्ता माही नी चरखी चरमक तो मैं कालख लाही नी जा सुत्ता।

0: दोस्तों, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होती है मेरी शाम तुम्हारे ही काम से। दो ठंडी ठंडी बियर ले आओ दोस्तों, अंडे शंडे साथ ले आओ दोस्तों। एसी जी
1: बहुत खूब बहुत खूब जी, काफी मतलब ऐ कह लो भी काफी खर्चा बता ऊ गीत नु कह सकते आप जेड़ा अखीर च होया काम।
0: एजी पदम शहरावत दा ओ इदा ही नाल ना फिर सुना के शेर सू जनाब गाना सुना दे एंड ते निकल गया।
1: जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: कहिंदा मैं यादों का किस्सा खोलो, मैं यादों का किस्सा तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं
1: जी।
0: मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब ना जाने कौन सी नगरी में देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे। कुछ बातें थी फूलों जैसी
1: जी,
0: कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। मैं शहरों चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं।
1: वाह।
0: सबकी जिंदगी बदल गई, किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं, किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं, सारे यार गुम हो गए। तू से तुम और आप हो गए, सारे यार गुम हो गए,
1: गुम हो गए।
0: मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। धीरे धीरे कट जाती, धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन की यादों की पुस्तक बन जाती है। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन की यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद को बहुत तड़पाती है और कभी किसी के सहारे जिंदगी कट जाती है।
1: वाह।
0: किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते,
1: नहीं आते।
0: फिर जीवन में वही दोस्त पुराने नहीं आते,
1: नहीं आते।
0: जो जी लो इन पलों को हंस के दोस्तों, जी लो इन पलों को हंस के दोस्तों, लौट के वैसे दोस्त पुराने नहीं आते।
1: क्या बता बहुत खूब बहुत खूब।
0: ना बे

की कसम दोस्त तो पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम ना बचपन बड़ा

0: क्या बता, क्या बता, क्या बता।
1: शाम ये भी अतिथि रोज बताऊंगे
0: बाखूब
1: लाइव हो गए।
0: क्या बता जी, यादगारी शाम हो गई।
1: एक सी हाँ जी, एक सीगा उगना देखिए चमचों से सावधान रहे
0: जी,
1: इनका स्वाहा करें। देखिए चमचों से सावधान रहें, इनका स्वाहा करें। चमचे अलग अलग शेप साइज रंग के होते हैं
0: जी,
1: चमचे अलग अलग शेप साइज रंग के होते हैं, मगर इनकी तस्वीर एक ही होती है। चमचा किसी का सगा नहीं होता, ये जिस भी थाली में जाता है उसको खाली कर देता है।
0: ओए होए होए होए होए होए, वाह।
1: चमचा किसी का सगा नहीं होता, ये जिसकी भी थाली में जाता है उसको खाली कर देता है। इनकी चिकनी चुपड़ी बातें मीठा जहर जैसी होती हैं।
0: ओए होए होए,
1: इससे अच्छी तो आपको अपनों की कड़वी बातें अच्छी लगती है,
0: लगती है।
1: इससे अच्छी तो आपको अपनों की कड़वी बातें अच्छी लगती हैं।
0: वाह।
1: जहां आपको सच्चा प्यार उसने ना मिलता हो, जहां कोई आपका तरसिकार करता हो, वहां आप क्यों किस बात पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता है, किस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता है, उस तट पर प्याज बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात।
1: किस तट पर प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता है, उस तट पर प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है।
0: बेहतर है, बहुत खूब, बहुत खूब जी।
1: चांद चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये सी अज दे अपने जी मन दी मौज जी, दो चंद नाम दी।
0: वाह जी वाह,
1: जिंदगी जिंदाबाद,
0: मोहब्बत जिंदाबाद जी, क्या बता,
1: मोहब्बत जिंदाबाद। धन्यवाद शमी जी, बहुत बहुत
0: जी,
1: टाइम देने लिए शुक्रिया जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, क्या बता, जिंदाबाद जानिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। दोस्तों अपने नाल भाई हरजिंदर जी जीरा तो सांझ पा के गए। मैनू याद आ गया कि जदों पहला टीवी छतरी वाला हुंदा और शटर खोल के ऐ विचों साइड तो कन्न मरोड़ के चलता सी, उहदे उत्ते ऐ 10-12 ऐ रेगुलेटर जिहा भी लग्गिया हुंदा सी चैनल, टिक टिक टिक टिक। हालांकि किसी होर च कोई चलदा नहीं सी, इक दे उत्ते चलना पैंदा सी उहनूं, होर कोई चैनल
2: साडे स्कूलां च घटिया नहीं,
0: ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਦੇ। ਚਲੋ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਤੋ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ, ਸਲਿਊਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਵਾਗਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਰਾਂ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਜੀ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਹੁਣ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੇ ਅਦਾਲਤ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਮ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈ ਉਸਮੇ ਕਿਆ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਠਾਲੀਏ, ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋਸਤੋ। ਖੈਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਲੋ, ਪਰ ਨੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੈੱਟ ਅਪਸੈਟ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮਨ ਮੌਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨਮੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਬਾਤਾਂ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। माता जी चरणजीत कौर जी लिख रहे हैं कि सब की पेशकारी बाकमाल सी, शुक्रिया माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह ही काका औजला साहब पुरानी मोहब्बत भेजी, उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि मेरे को कुछ नाम जड़े है वह रह गए हो, मैं दिल की गहराइया तो माफी चाहांगा, क्योंकि कई बार स्क्रोलिंग अप डाउन करते करते ए हो सकता है, यह सुभाविक है। पर दिल तो दिल तक जी आवाज दोस्तों की जी पहुंची है, वह शुक्रिया सब का, मोहब्बत जिंदाबाद है, जिंदगी जिंदाबाद है। एक बाई की अपना ज्यादा गल करके जावे, जिंद उपर क्योंकि मनमोजी की गल करते हैं, तो एक राजा यहोजा भी होया जिन्हों पढ़िया लिखा मूर्ख राजा कहा जाता, वो गल करके फिर अपना करते हैं समाप्त। दिल्ली सल्तनत जो आई है लगभग 1300 के करीब आई सी, 1327 उत्थे एक राजा आया, बहुत ही कहिंदे पढ़िया लिखा बंदा सी, सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक। यह तुगलक बई यहा जहा सी कहिंदे भी मतलब इन्हें तुगलोंगी करती पूरी दुनिया की, यह अति विद्वान पर कहते भी प्रैक्टिकल बंदा नहीं सी, क्योंकि इन्हू पढ़िया लिखा बहुत सी, मैथ इन्हू आउंदा सी, जानी कि जिहड़ी एस्ट्रोनॉमी आउंदी सी, एस्ट्रोलॉजी कह लो जो एस्ट्रोनॉमी ज्यादा सी, नजूम विज्ञान तारा विज्ञानी भी सीगा, फलसफा तो सीगा ही सीगा, नीतियां इहदियां चंगी आउंदी सी, पर जो लाउण की कोशिश होंदी नीतियां तो सारी उल्टा ही पैंदा सीगा। 1327 च इन्हें भाई दिल्ली तो कहना जी इधर बाले हले हुले होंदे, इधरों फगानी नेड़े है, इधरों फलाने नेड़े है, इथों चक्को राजधानी सियाणप कीती इहने, नवीं एक राजधानी बनाई साउथ दे विच जाके दौलताबाद, उत्थे कहिंदा चलो जी लो इहे तुरे लोग सारी पट के सारा खजाना सारे दफ्तर सने लोग सने परजा, चलो जी उधर नूं तुगलकाबाद दौलताबाद, उत्थे पहुंचदे पहुंचदे अद्धे तां राह च ही मर गए बेचारे। फिर उत्थे जदों गए किले च पता लग्या वी इह जिहड़ी जगह च बना लिया किला ना पानी ना धाणी भाई इत्थे करना की है, फिर उत्थों मरिया गया, कहिंदा चलो वापस चलदे आ जी, फिर मोड़ लिया। उदों कहिंदे वी करंसी दे विच लाल लाल हो गई मुक गई इहने फिर टोकन करंसी कढी भाई ने नवीं काढ कढती, कह चांदी है नहीं, फिर इन्हें तांबे के पित्तल के सिक्के कहना यह चला लैने कोई नहीं, सियाणप की सियाणा राजा सी बहुत, पर लोग उदू भी सियाने सी, लोगों ने कहा अल्ला गल कुछ नहीं यार, लोगों ने घरे भांडे भन के अपने सिक्के बना ले सारी आर्थिकता तबाह हो गई, तो जमा ही एंड हो गई। तो ऐसे जिहड़े लोग इन्हां नूं मनमोजी जां सिरफिरे कहा जा सकता है, इन्हां दा भी बहुत प्रभाव पिया, तो सारा जिहड़ा जोड़ मेला है कि कमाला धमाला जिहड़ियां हुंदियां रहिंदियां ने, बहुत जरूरी है जिंदगी अपनी शर्तां ते जीनी, ते जिन्नी भी जी जा सके उन्नी जरूर जी लैनी चाहीदी है, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का है ना मुरदा दिल क्या खाक किया करते है, इहो जिहे शेर शूर भी आपां पढ़दे हां विच विच कदे ते उह बड़े कमाल दे लगदे है। बहुत खूबसूरत समा रहा, बहुत ही अच्छा अज दा जिहड़ा सारा प्रोग्राम दा माहौल बनिया रहा है। मनदीप कौर जी, अमृत कौर जी, एच एस मिठू जी, ते होर सारे दोस्तां दा बहुत बहुत शुक्रिया। लैने जी आग्या आप दोस्तों, कल मिलते हैं एक नवे प्रोग्राम दे विच नवे विषय दे नाल, ते दिओ आग्या, मुस्कुराउंदे रहो, मुहब्बत जिंदाबाद अते जिंदगी जिंदाबाद जी। मैं इधरों चलाउणा आउटरो, 1 2 3

मैनू जानी ना तिला बौकर बन के हूं जदूं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पखियां।

तेरा हुण तख्त हिला देना जेने तू तख्त ते चढ़ बैठे ओ कुरनावे लबांगे जिस दे विच जा वड़ बैठे मैं।

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात

तक दिया रहिया ने रामा नित तेरिया है रामा नित तेरिया। रो रो के पिछे गई अखा दोवे मेरिया वह अखा दोवे मेरिया। गल सुन दिल धारा तेनू कहना नी दुबारा, गल सुन दिल धारा तेनू कहना नी दुबारा। हूँ

तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा, तेरे रोने च रोआ।